थोड़ी साई भय दयाल कृपा करता साई कर कराईसी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाईसी हुक्म मनिए होवे परवाता कसमे का मल पाईसी कसमे पावे सो करे मनुष्य।

ओड़िया पे ही करना पियो कला पे ही तारी है, देखे किता अपना दर कची पकी सारी है, जो आया सो चल सी सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है के उसाई मन सारी है, अपन हती अपना आपे ही का सवारी है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी

0: कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश BRICS@20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ज्ञान अमृत

0: पूरन खुशी लई सारी सृष्टि नाल हमदर्दियां दा ताणा तणिया जाना जरूरी है ते इस ताणे नूं कोई चंगा समाज ही तण सकदा है।
1: ਏਸੀ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਾਧਨਾ।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

0: विदेश मंत्रिमंडलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमंत्री एस जयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमंत्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEETUG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च पञ्च अभियुक्तान् गृहीतवान्। प्रकरणस्य पञ्च अभियुक्ताः जयपुरतः त्रयः, एकैकौ गुरुग्रामनाशिकतः, अन्ये अनेक च शङ्किताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति। असमसर्वकारः अस्य मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के राज्यविधानसभायां यूनिफार्म सिविल कोड UGCC इति समाननागरिकसंहिता विधेयकं प्रवर्तयिष्यति। मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्वशर्मा इत्येषः मुख्यमन्त्रिरूपेण द्वितीयकार्यकालस्य प्रथममन्त्रिसभायाः अध्यक्षतां कृत्वा प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् घोषणैषा अकरोत्। सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषण विभागस्य CBI इत्यस्य निर्देशकाय प्रवीण सूद इत्यस्मै एकवर्षस्य विस्तारः दत्तः। उत्तरप्रदेशे धूलि प्रभञ्जनेन सह विद्युत प्रभञ्जनेन वृष्ट्या च गतचतुर्विंशतिहोरासु त्रिचत्वारिंशत् जनाः मृताः। भदोही मण्डले सर्वाधिकाः 15 जनाः मृताः इति सूचनास्ति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण आलुकं, पलाण्डुः, फल, शाकानि, तैलबीजादिभिः सह अन्यधान्यानि आवश्यकोत्पादेभ्यश्च अन्ताराज्यस्तरेषु आवागमनाय सर्वे प्रतिबन्धाः उपाहरिताः। अन्ते प्रियाः श्रोतारः, क्रीडावार्तायाम्। IPL इति क्रिकेट् क्रीडायां गतरात्रौ रायपुरे रायल चैलेंजर्स बेंगलुरुदलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।
1: अस्य आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते। इस समय सवेर दे 7 ने पेश ने मुख खबरां। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने 2026-27 दी मंडीकरण रुत ले 14 सौनी फसलों लिए घट्टो घट समर्थन मुल विच वादे नूं मंजूरी दे दित्ती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत नाल कोला ते लिगनाइट गैसीकरण प्रोजेक्टां नूं उत्साहित करन संबंधी एक योजना नूं भी प्रवानगी दित्ती है। एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा की गिनती घटाउण दा फैसला किया है। CBSE अते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात की बोर्ड प्रीख्या के नतीजे ऐलान दिते ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब दे एक लोड़ींदे नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शेरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार वल्लों रक्षा बलां विच कार्यकाल पूरा होण तों बाद सरकारी नौकरियां विच अग्निवीरां लई राखवांकरण नीति बनाई जाएगी। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों नाल तालमेल करके बटाला दे पिंड भौमा दे 2 व्यक्तियों दे कातलों नूं भारत भूटान सरहद तो गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार दे NRI मामले मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने ऑनलाइन मिलनी करके विदेशों विच वसे पंजाबियों दी समस्यावां, शिकायतां अते सुझाव सुने। भारत दे ज्ञानेश्वरी यादव ने गांधी नगर विच एशियन सीनियर चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग विच चांदी ते कांसी दा एक एक तमगा जित्या है। ते मौसम विभाग वल्लों पंजाब विच अज ले तेज हवावां ते बारिश दा येलो अलर्ट जारी। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां ते अगलीआं मुख खबरां दा समां रहेगा सवेरे 9 बजे।

लगे या विश्वास ना आए, पर विज्ञानियों ने पाया कि रुख एक दूसरे नूवी संकेत पेसे ने इशारे कर देने, जिस तरह जेकर कोई कीड़ा हमला करे तो दूजे रुख नू चेतावनी दे देंदे ने। पौद्यां दे दरमियान आपसी इशारे तीन तरीकों नाल हुंदे ने, रुख दियां जड़, पत्तियां ते हवा दे जरिए। उदाहरण दे लई, जदों कोई शाकाहारी जानवर विलो रुखां नू कुतरदा है, कटदा है, तां ओह एक तरह का कार्बनिक यौगिक छड्दे ने जो अपने आस पास के रुखां नू आउण वाले खतरे की चेतावनी देंदे ने। संकेत छोड़न की यह घटना सवाना दे बबुल दे रुखां ते भी देखी जाती है। जदों जिराफ उन्हां नू खांदे ने तां ओह एथलीन गैस छोड़दे ने। यह गैस 50 गज तक फैल सकती है ते 5-10 मिनट के अंदर आस पास के रुखां दीआं पत्तियां विच टैनिन का उत्पादन वधा देंदियां ने, जिस नाल जानवरां दे लई बहुत ही बेसवाद ते खतरनाक बन जांदियां ने। ते अफसोस नाल जिराफा ने यह तरकीब सीख ली है ते जिस तरह अगे वधदे ने ओह हवा की दिशा के विपरीत चरना शुरू कर देंदे ने ताकि ओह बचे रहण। लिपजिंग यूनिवर्सिटी ते जमीन सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के एक अध्ययन तो पता चलता है कि रुख इस गल का अंतर कर सकते हैं कि कोई हिरन उन्हां दी टैनिन नूं कट रहा है या कोई इंसान इसनूं अपने हत्थां नाल तोड़ रहा है। दिलचस्प गल यह है कि पेड़ हिरण की लार का स्वाद पहचान सकते हैं ते इहदे जवाब विच इस तरह के रक्षात्मक रसायन बनाते हैं जो पत्तियां नूं बेस्वाद बना देंदे ने, जबकि दूसरे मामले विच रुख जख्म भरन वाले पदार्थ बनाते ने। कुछ रुख अपने पत्तियां दे खास रसायन छड़दे ने जिस नाल कि कीड़े दूर नस जांदे ने। इसे तरह नाल विज्ञानी कदे कदे जंगल नूं वुड वाइड वैब भी कहिंदे ने, यानी कि रुखां दा अपना इंटरनेट। सो कुदरत दे अपने रंग ने, कुदरत नूं समझो तां कुदरत दी हर चीज़ कुछ कहिंदी है, बस लोड़ है सानूं इस नूं सुनन दी। प्रोग्राम है सोहणी सवेर, हाज़र हुंदे आ गीत तों बाद।

या ब्याह कर ले। मरीज ने बड़े हैरान होकर पूछा, इस नाल उम्र किवें लंबी होएगी? तो डॉक्टर का जवाब सी, इस नाल दो फायदे जरूर होंगे, एक तो लंबी जिंदगी की जड़ी इच्छा है खत्म हो जाएगी, तो दूजा जो बची खुची जिंदगी होएगी वो लंबी लगन लगेगी। चल रहा प्रोग्राम सोहनी सवेर आकाशवाणी के जलंधर केंद्र नाल। वैसे आकाशवाणी की गल करिए भजन हिताए भजन सुखाए भाव सारे दे भले सारे दी खुशहाली लई पिछले 9 दहाकों तो 592 केंद्रा राही वक् वक् प्रोग्रामा ते जानकारी सिक्ख्या ते मनोरंजक प्रदान करद्या ते हुण तां 98% तो वध चढ़े लोग ने आकाशवाणी नूं सुणदे ने। 8 जून 1936 नूं इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो AIR रख्या गया सी, जदों पीढ़ियां तक गूंजती एक आवाज़ पैदा हुई सी और आकाशवाणी ने बहुत सारे लोगों नूं स्थापित किया है, राह दिता है और हमेशा ये राह दिंदा रहेगा। ये है आकाशवाणी।

0: हजम नहीं कर सकते तां की खाइए की ना खाइए भोजन नूं चंगी तरह चबा के खाना चाहिदा है। बदहजमी दी समस्या पैदा हो जांदी है। इह नहीं भोजन चंगी तरह चबोण नाल दंद भी तेज़ ते साफ रहिंदे ने ते भोजन खांदे समय सही ढंग नाल बैठना चाहिदा है। ते इसी तरह बहुत ज़्यादा कसे हुए कपड़े नहीं पाने चाहिए खाण वेले, बैल्ट भी कस के नहीं बननी चाहिए और लोड़ तो वध खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या तो तुसी अद्धा घंटा पहला पियो पानी या फिर अद्धे घंटे बाद। आम तौर पर असी 3 बार भोजन करते हाँ, सवेरे दोपहर ते रात नूं। इन्हां तिना समय दौरान वधेरे भोजन करन नालों ज़्यादा हुंदा है कि 3 दी बजाए असी 6 बार खा लईए, थोड़ा थोड़ा खाइए और थोड़ा थोड़ा पच जाए। और यह भी गल हमेशा याद रखनी है कि भोजन खाते समय कोई तनाव नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय हल्की फुल्कियां गल्लां होनियां चाहीदियां ने। हुण भोजन की गल करें तो भोजन हजम होने की क्रिया में 2 घंटे तो लैके 36 घंटे लगते हैं। तो इस पर निर्भर करता है कि भोजन किस तरह का है, तो भोजन में किन्ने रेशे की मात्रा है, किन्ना पानी पीते हो और किस तरह का तुहाडा हाजमा है, क्योंकि हर इंसान का हाजमा वक्रा वक्रा हुंदा है और समा भी वक्रा वक्रा हुंदा है कि एक व्यक्ति किन्ने समय में भोजन पचा सकता है। जड़ा ज़्यादा काम करेगा, बैठा नहीं रहेगा, ओदा खाना जल्दी पचेगा। खास तौर पर हुण गर्मियां के दिन ने तो असी कई बारी पानी पी लैने आ, फिर भुख मर जाती है, पर इस करके खाना जरूरी है और भोजन का पचना भी जरूरी है।
1: आई आई ओ।

किस्मत की बात है मालिक के हाथ है, किस्मत की बात है मालिक के हाथ है, किस्मत की बात मालिक के हाथ जी।

आता, अरे भाई उसका क्या जाता, सुनता है सबकी धक्का वो दाता, शादी कराने में उसका क्या जाता, दुनिया में देखो कदम कदम पर, दुनिया में देखो कदम कदम पर, कोई न कोई बरात है, किस्मत की बात है, किस्मत की बात, मालिक के हाथ जीवन का साथ है, शादी शादी शादी, हाय गोरी गोरी काली काली पतली कमर वाली इल्ली बिल्ली खाली पिल्ली प्यारी प्यारी आंखों वाली शादी।

अरे भाई अच्छी ही होगी, मालिक ने चाहा तो अपनी भी होगी, जैसी भी होगी अच्छी ही होगी। शिमला या कमला, अमला या रमला, भोली हो भाली या नखरे वाली, लिम्बोली बिम्बल बोरी पिघला पापोरी, गांव की गोरी नटखट छोरी, हाथ में कंगन कान में बाली।

0: के हाथ है, किस्मत की बात है, मालिक के हाथ है, किस्मत की बात मालिक के हाथ, जीवन का साथ है। शादी शादी शादी।
1: एक डॉक्टर ने मरीज ने क्या, तेरे जैसे सिरफिरे मरीज का इलाज तो कोई पागल डॉक्टर ही कर सकता है। तो गो मरीज का जवाब सही, यही कह के तो मेरे दोस्त ने थोड़े को भेजा सी। प्रोग्राम है सोनी सवेर चल रहा है आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। अज के समय में शहरीकरण जिस तेजी वध रहा है उसने साढ़े वातावरण को गंभीर रूप नाल प्रभावित किया है। वधदा हुआ प्रदूषण ते घटदे रुखां दे कारण शहरां दा तापमान वध रहा है, जिस नाल हीट

एक दोस्त ने दूसरे दोस्त ने क्या कि मैं ब्याह दी गल करनी है, केड़े दिन वधिया रहेगा? ते गो दे दोस्त ने क्या, 1 अप्रैल। ते दोस्त ने पूछया, 1 अप्रैल है क्यों? ते गो दोस्त का जवाब सी, जे करो मन गई तो ठीक, नहीं तो क्या दयो, 1 अप्रैल फूल बनाया। प्रोग्राम है सोनी सवेर, चल रहा है आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। वैसे देखा जाए तो हुण जिहड़ा रिजल्ट आया है उस विच लड़कियां ने ही बाजी मारी है और बहुत खुशी दी गल है। और जिन्हें भी बच्चे पास होए ने सब नू बहुत बहुत वधाई असीं देने हैं, खास तौर पर गर्ल्स नू जो हर रूप विच टॉपर रही ने। और इस अलावा हुण गर्मी की गल करिए तां इह है कि गर्मी दियां हुण जिहड़ा है वध रही है गर्मी, पर एसी ने गर्मी नू जिहड़ा है गर्मी तो बचाया है, सानू ठंडक मिलती है सानू एसी नाल। और ये तकनीक बहुत वधिया किसी जिसने भी एसी बनाया है, पर इसका अनियंत्रण यानी कि अनकंट्रोलेबल असी वरतों करते हाँ तो आने वाली पीढ़ी नू एक गर्म ते बीमार जमीन

0: ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 7 ਵਜੇ, ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 7:15 ਵਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, 8:30 ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਅਹੈਡ, ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार और वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: भारत के यूनिफाइड

0: पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
3: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
6: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
7: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100

0: ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब

0: केसरी का शीर्षक है तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato' Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed

0: The Asianate carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu in its editorial title, testing troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, in the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets one-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन मीटिंग अज नवी दिल्ली विच शुरू हो रही है सरकार ने घरेलू कीमतां काबू हेठ रखण लई इस साल सितंबर तक चीनी की दरामद ते पाबंदी लई उत्तर प्रदेश विच पिछले 24 घंटियां विच मीह नाल संबंधित घटनावां विच 60 लोकां दी मौत पंजाब विच मौसम विभाग वल्लों कई थावां ते अज तेज हवावां समेत बारिश दा येलो अलर्ट जारी केंद्रीय जांच ब्यूरो दे डायरैक्टर प्रवीण सूद दे कार्यकाल नूं 1 साल लई वधा दित्ता गया है पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान नाल मुलाकात कीती ते सूबे नूं दरपेश वख-वख खेतीबाड़ी चुनौतियां बारे जानकारी करवाया ते आईपीएल क्रिकेट विच कल रात रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स नूं 6 विकटां नाल हराया हुण खबरां विस्थार नाल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन मीटिंग आज नवी दिल्ली में शुरू हो रही है इस मीटिंग की प्रधानगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे ब्रिक्स मैंबर देशों और भाईवाल देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के मुखी मीटिंग में हिस्सा लेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल भी मुलाकात करेंगे मीटिंग दौरान ब्रिक्स मैंबर देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के आलमी और खेतरी मुद्दों पर विचार वटांदरा करेंगे मीटिंग के दूजे दिन ब्रिक्स एट 20 लचकीलापन नवीनता सहयोग और स्थिरता लई निर्माण विषय पर एक विशेष सैशन कराया जाएगा इस तो बाद आलमी शासन और बहुपक्षी प्रणाली में सुधार पर चर्चा होगी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की इस तो पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सैशन दौरान हुई सी भारत ने 2026 लई ब्रिक्स चेयर वजो मीटिंग की प्रधानगी की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग तो पहला आलमी नेता नवी दिल्ली पहुँच गए ने इन्हां नेतावां विच ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराकची थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सियासक ह्वांग किटकियो क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिक्स परीला ते वियतनाम के उप विदेश मंत्री न्योगेन मिन हांग शामिल ने मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरियोतामा मुहम्मद बिन हाजी हसन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय के राजमंत्री खलीफा शाहिन अल मार्क भी नवी दिल्ली पहुंच गए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली के पांच देशों के 6 दिन के दौरे के पहले पड़ा च कल आबूधाबी जाएंगे प्रधानमंत्री का पांच देशों का दौरा भलके तो 20 तरीक तक रहेगा विदेश मंत्रालय में पच्छम बारे सकत्र सीबी जॉर्ज ने दसिया कि अपनी पांच देशों की यात्रा के पहले पड़ा से श्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तुम
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेज आए, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जी हां कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे।
4: आरबीआई कहिंदा है
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।
6: हेलो,
7: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
8: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
9: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਪੋਸਤੀ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। पेश ने मुख खबरां। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन मीटिंग आज नवी दिल्ली में शुरू हो रही है। सरकार ने घरेलू कीमत काबू हेठा रखने लिए इस साल सितंबर तक चीनी की दरामद पर पाबंदी लाई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मीह नाल संबंधित घटनावां में 60 लोगों की मौत। पंजाब में मौसम विभाग वालों कई थावां ते आज तेज़ हवावां समेत बारिश का येलो अलर्ट जारी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरैक्टर प्रवीण सूद के कार्यकाल में 1 साल वधा दिता गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज चौहान नाल मुलाकात की ते सूबे नूं दरपेश वख वख खेतीबाड़ी चुनौतियों बारे जाणू करवाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब के कलोनी के नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शेरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों नाल तालमेल करके बटाला के पिंड पोमा के दो व्यक्तियों के कातलों नूं भारत भूटान सरहद तो गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार के NRI मामले मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने ऑनलाइन मिलनी करके विदेशों में वसते पंजाबियों दी समस्यावां शिकायतां ते सुझाव सुने। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि भारत नूं ऊर्जा सप्लाई नाल संबंधित सारे समझौतों नूं पूरा किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन शिखर सम्मेलन लई चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे ने ते IPL क्रिकेट विच कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स नूं 6 विकटां नाल हराया। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां ते अगलीआं मुख खबरां दा समां रहेगा सवेरे 10 बजे।

हौली हौली माधुरी दीक्षित का नाम हो गया और बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं और राजश्री प्रोडक्शन की परिवारिक ड्रामा फिल्म हम आपके हैं कौन आई, सलमान खान इन्हों का हीरो रहे और फिल्म हिंदी सिनेमा के सब तो वड्डे हिट विच एक बहुत वड्डी उभरी और काफ़ी इस फिल्म ने कमाई की थी और एक रिकॉर्ड बन गई और नाम बन गया माधुरी दीक्षित का।

और इस सुबह सुबहिश गई नाल दोबारा जुड़ी माधुरी दीक्षित। इस तो पहला माधुरी दीक्षित ने सुभाष कई होर ने फिल्म राम लखन लई काम किया सी और राम लखन भी उन्हें हिट रही जिन्हें की हिट हुई खलनायक संजय दत्त नाल जो फिल्म आई और माधुरी ने निभाया गंगा का किरदार और इस तरह उसने पूरी एक्टिंग अदाकारी नाल इस फिल्म नू एक बेहतरीन कलाकार बना दिता और माधुरी दी जड़ी एक्टिंग सी वह भी बहुत पसंद की गई।

जैकी श्रॉफ उसे हीरो रहे। इस अलावा कुछ और फिल्म आईयां, टी रामाराव हरंदी प्रतिकार, नाना पाटेकर ते नाल आई प्रहार। ये फिल्म रिलीज़ हुई हैं सन 1991 विच, पर सब तो जड़ी कमाई करन वाली फिल्म है और वो आई साजन, संजय दत्त, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, एक लव ट्रायंगल दे रूप बीच ये फिल्म आई। और इससे फिल्म ने माधुरी दीक्षित नो ना सिर्फ प्रशंसा दिलवाई बल्कि इस फिल्म लई माधुरी दीक्षित नो फिल्म फेयर अवार्ड नाल भी सम्मानित किया गया।

तकरीबन सन 1985 तो लै के 2000 तकरीबन 4-5 तक माधुरी दीक्षित का बहुत ही नाम रहा है। और फिल्म चाहे हिट हुई होवे ना या ना हुई होवे, पर माधुरी दीक्षित के नाम नाल संगीत नाल काफ़ी सारिया मूवीज़ हिट हो गई हैं, क्योंकि नाम सी माधुरी दीक्षित। हुण इस विच प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म कीती माधुरी दीक्षित होरां ने मिथुन चक्रवर्ती नाल, जो कि सफल रही। काफ़ी सारिया माधुरी दीक्षित होरां दी फिल्म्स हिट रही। माधुरी दीक्षित ने त्रिमूर्ति फिल्म से मल्टी कास्ट थ्रिलर फिल्म त्रिदेव विच सनी देओल नाल कास्ट किया गया, ते उस समय दी ये सब तो वड्डी हिट बनी। इस अलावा फिल्म परिंदा आई तां परिंदा अनिल कपूर नाल, ये भी अपने समय दी बेहतरीन फिल्म मनी जाती है।

माधुरी दीक्षित होरां ने अपना सफ़र 1984 की फिल्म अबोध तो एक शुरू की थी, और उस तो बाद इन्हां ने सफ़र चलता रहा। तो प्रशंसा विच माधुरी दीक्षित 17 नामजदगियों विचों 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल रहे। तो 2008 विच भारत सरकार ने उन्हां नूं पद्म श्री नाल सन्मानित किया, जो कि देश का चौथा सब तो उच्चा नागरिक सम्मान है। और माधुरी दीक्षित की फिल्मों की गल करिए, दिल, बेटा, राजा, तेजाब, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, इस अलावा राम लखन, त्रिदेव, थानेदार कृष्ण कन्हैया, साजन, खलनायक, ते राजा, प्रेम प्रतिज्ञा, अंजाम, मौत, पुकार, लज्जा, इन्हों सब फिल्मों इन्हों फिल्मफेयर पुरस्कार मिलिया बेहतरीन अदाकारा लई।

माधुरी दीक्षित चाहे फिल्मा कट करे ने पर बहुत सारियां वेब सीरीज ते अपना काम करे ने और अपना नाम जड़ा है उसी तरह दा स्थापित रखा है माधुरी दीक्षित और।

0: आने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत

0: मुश्किल होती है।
1: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
1: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
1: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
1: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो बिमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
1: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
1: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ, श्रोताओं आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
1: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
1: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
1: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ

0: और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे

0: युद्धवीर के होठों से निकले हैं, जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सूबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर

0: हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं साहब।
0: ओए वो फायर है, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, गाड़ी का फायर क्या?

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा

0: Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Then he stared at the pool in surprise, for out come sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. "Don't you like it?" said all the creatures in surprise. "Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun." Hari leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time. So he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks.
1: "They only did to me what I keep doing to the other children,"
0: he thought.
1: "But how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore."
2: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने मुख खबर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन मीटिंग अज नवी दिल्ली में शुरू हो रही है। सरकार ने घरेलू कीमतों काबू हेठा रखने इस साल सितंबर तक चीनी की दरामद पर पाबंदी लाई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मीह नाल संबंधित घटनावां विच 60 लोगों की मौत। पंजाब विच मौसम विभाग वालों कई थावां ते अज तेज़ हवावां समेत बारिश का येलो अलर्ट जारी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरैक्टर परवीन सूद के कार्यकाल में 1 साल लिए वधा दिता गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान नाल मुलाकात की। सूबे नूं दरपेश वक् वक् खेतीबाड़ी चुनौतियों बारे जाणू करवाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब के एक लोड़ींदे नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शेरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों नाल तालमेल करके बटाला के पिंड भोमा के दो व्यक्तियों के कातलों नूं भारत भूटान सरहद तों गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार दे NRI मामले मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने ऑनलाइन मिलनी करके विदेशों विच वसे पंजाबी दीआं समस्यावां शिकायतां अते सुझाव सुने। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि भारत नूं ऊर्जा सप्लाई नाल संबंधित सारे समझौतियां नूं पूरा किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन शिखर सम्मेलन लई चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे ने। IPL क्रिकेट विच कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स नू 6 विकेटों नाल हराया। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां।

0: ग्राम गुलोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तो नुसरत सुरवे बात कर रही हूँ
1: अच्छा, क्या करते हैं आप?
0: जी मैम। मुझे 10वीं से दिखाई नहीं देता, तब से मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ।
1: चलिए, बहुत अच्छा है, सीखिए शास्त्रीय संगीत को। तो बताएं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी मैम, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है और गाने के बोल है आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते, ऐसे गाने के बोल है मैम।
1: अच्छा ठीक है, तुमसे अच्छा कौन है, नई वाली है ना?
0: जी
1: हाँ, तो
0: आपको, हमारे सभी श्रोताओं को, मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
1: अच्छा ठीक है, तो
0: जी
1: आपने जो हमें गीत लिखा है, कोशिश करते हैं सुनाने की, और पर
0: जी
1: फिलहाल ये गीत मिल नहीं रहा, कोई और चॉइस बताएंगी आप?
0: आपकी पसंद का कोई भी लगा दीजिए
1: चलिए
0: ऐसा।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। ठीक
0: ओके
1: है, इसी
0: बाय।
1: तरह संगीत सीखते
0: ओके
1: रहिए और संगीत में आगे आइए। ठीक है,
0: जी ओके
1: हमारी ये कामना है, शुभकामनाएं, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
0: जी
1: ठीक है
0: ओके बाय।
1: जी। प्रोग्राम है हेल्प फरमाइश, तुसी भी साडे नाल जुड़ सकते हो। साडा नंबर है 2342173। और कई वारी साडे कोल फिल्म नहीं हुंदी, इस गल दी असीं माफ़ी चाहते हैं। ते आओ सुनते हैं गीत, आवाज़ है अलका याग्निक होरां दी। प्रोग्राम है हेल्प फरमाइश, तुसी भी जुड़ सकते हो साडे नाल। असीं बार बार अपना नंबर दसते हैं, असीं बार बार इस करके दसते हैं अपना नंबर, ताकि जिहड़े साडे दोस्त ने साडे नाल जुड़ सकन और इस प्रोग्राम विच शामिल हो सकना।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार। रंगीला
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: हूँ मैं, दिल का पीस गुलियानी है मेरा नाम। आकाशवाणी से करता हूँ इतना प्यार कि इसमें फोन लगाना है मेरा काम।
0: रोज के कदे कदे
1: मैडम तुसी जिस दिन आंदे उस दिन लगता मैडम, नहीं तो नहीं
0: ना
1: लगता
0: ना
1: जी
0: ना,
1: पीस।
0: इदा नहीं हो सकता। तुसी कोशिश ही नहीं करते होने
1: नहीं
0: है?
1: कोशिश कर दिया मैडम, कोशिश
0: अच्छा
1: क्यों नहीं कर दिया, उंगला घस गई, एक तो फोन भी खराब हो गया, मैं सोचा शायद फोन बदल दिया।
0: चलो ठीक है, गीत दस्यो फटाफट बिना टाइम
1: पीस
0: वेस्ट
1: गुलियानी
0: किते।
1: बोल रहा है, दिलकुशा माँ के जुने दो तो ते गीत सुना दो मैडम जी, फिल्म फर्ज।
0: हाँ
1: हम तो तेरे आशिक है, आकाशवाणी सदियों पुराने,
0: ठीक है
1: चाहे
0: जी,
1: साले
0: बहुत
1: लो
0: बहुत शुक्रिया
1: कुर्बानी।
0: कॉल कर। नंबर है 2342173 यानी 2342173। एरिया कोड है जलंधर 10081 यानी 0181। तुसी भी सानू फोन कर सकते हो, अपनी फरमाइश का गीत सुन सकते हो, बेशर्ते साढ़े कोल होना चाहिए है।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी मैडम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: मैं जी मेन बाजार मंडी लाडू का जिला फाजिलका तो वरिंदर कुमार काड़ा बोल रहा हूँ।
0: की हाल चाल है वरिंद्र कालड़ा जी?
1: बहुत ही वधिया मैडम जी।
0: वधिया, बस वधिया होना चाहिए। तो वधिया दे नाल ही गीत दस दियो अपना।
1: अरे पिक्चर है कि बेताब बादल यूं गरजता है।
0: लो जी, बादल गर्जन। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने
1: थैंक
0: लिए।
1: यू।

0: तो किलो खून बढ़ जाता है।
1: चलिए अच्छी बात है ना, कम से कम और हमें भी खुशी मिलती है आप लोगों से बात
0: हाँ,
1: करके।
0: ज्यादा तो ये है कि आप लोग फोन करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, फोन कितनी मेहनत से
1: और
0: मिलाते हैं हम
1: आपको भी
0: तो।
1: तो अच्छा लगता होगा, अलग अलग जगह से कॉलर से बात
0: हाँ
1: करके तो
0: बिल्कुल,
1: आपको
0: वो
1: भी अच्छा
0: तो
1: लगता होगा
0: हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो
1: जी।
0: हम तो ये जो आपकी मेहनत है, हम तो उसका शुक्रगुजार गुजार करते हैं कि चलो ये आप कितनी मेहनत से हम तक पहुँचते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता
1: जी तो
0: है ना। तो रानू जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: मूवी का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे और गाने के बोल है ओ माय डार्लिंग आई लव यू, डेडिकेट आपको रहेगा और मेरी
0: ठीक
1: बहन
0: है,
1: नंदिनी को रहेगा। बस
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं आप?
1: धन्यवाद जी।
0: ठीक है।

0: हेलो प्रोग्राम हेलो फॉर माय फिश, आप दा स्वागत है। कौन बोल रहे हो?
1: हेलो,
0: हाँ जी हेलो जी, कौन बोल रहे हो?
1: नमस्कार जी। मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ, मलेरकोटले तो।
0: स्वागत कर रहे राकेश जी, पर अपने रेडियो सेट दी
1: हाँ जी
0: चली
1: हाँ जी हाँ
0: वॉल्यूम
1: जी
0: है
1: मैडम, तक आवाज तक
0: ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: हाँ ठीक है, गीत दस्ते हो?
1: जी फिल्म है जी गैम्बलर, किशोर
0: हाँ जी
1: कुमार की आवाज है। चूड़ी नहीं मेरा दिल है ये। धन्यवाद
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन
1: जी, शुक्रिया
0: करने
1: जी,
0: ले
1: मेहरबानी।
0: जी। तुसी सानू फोन कर सकते हो 2173173।

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 to 40 साल दे विचकार है तां महीनावार अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: प्रोग्राम है। हेलो फरमाइश। हेलो
4: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
3: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
4: कुलवंत सिंह, पिंड बोजो के जिला फरोजपुर तो बोल रहे मैम।
3: हाँ जी, की हाल चाल ने कुलवंत जी?
4: बहुत वधिया मैम, बाबे नानक दिया मेरे, तुसी सुनाओ मैम।
3: बहुत वधिया, गीत दस दियो।
4: गीत है जी, जंजीर फुलमुंडा जी, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए।
3: लो जी।

0: अब्राहम है। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम जी, मैं सुबोर तो बोल रहे हैं जी।
0: हाँ जी सुखदेव जी, केड़ा गीत सुना आज?
1: मैडम जी, फिल्म है जी अर्पण, ओदा गाना है जी, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, असा हुण तुर जाना, दिन रह गए थोड़े।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने
1: धन्यवाद
0: लिए।
1: जी।
0: तुसी भी सानू फोन कर सकते हो, साडा नंबर है 2342173।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो,
1: तो सुप्रीम वाली गुड
0: हाँ जी
1: मॉर्निंग।
0: नमस्कार, जी नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: मेरे बिट्टू बोल रहे दूरदर्शन में बैठकर मुंगू मछली जल रहे मैं भी
0: मैं लग रहा चिट्ठी पहुंच ही जाएगी फिर उस एड्रेस पे
1: पहुंच
0: है।
1: गई मछली
0: ठीक
1: जलता है।
0: है,
1: और
0: गीत
1: तो बात
0: केड़ा
1: ठीक है
0: सुनना?
1: तुम्हारी?
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: ठीक
0: हाँ जी गीत दसो केड़ा सुनना
1: है
0: चाहते
1: जी
0: हो?
1: मैडम। चलो अनजान जाने अनजाने अगर गाना नीवी नीवी आके
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।
1: ओके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स, अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़े

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

सादुल शहर, वेद पाल, इंदु बाला, राकेश, शाकिला, रोहिणी, अभिनव, सानवी, मीकू, शशि, बिश्नोई, अर्पित ते भाड़ू, ये पहुँचे ने जी। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने ब्रिजलाल चांवरिया, रोशन लाल, गगन विश्वास चांवरिया, अभिषेक, और ये पहुँचे है जी नाल इन्हों दे शैरोन, एरिक ते ब्लैसी, बजरंग बेरवाल, योगिता, डिंपल ते वर्षा, ये भी नाल नाल पहुँचे ने। एड्रैस कहिंदे साडा नोट कर लो, VPO हंजीरा नाथूसरी चौपटा, ज़िला सिरसा, हरियाणा तो ये पहुँचे ने। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचाया रिंगनी छत्तीसगढ़ तो, दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा ने, कुलवंत कुमार, सुनीता फलक और काठपाल परिवार, पिंड बनवाला हनुमंता, ज़िला फाजिलका, ये पहुँचे ने जी। मलोड़ तो पहुँचे ने कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल कैनेडा तो, जगतार जग्गा धौला किंगरा तो, दिशा मोला, सोनी गिल, पाल गिल गुरद्या

0: देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम बस से विड़े।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और

0: कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अपने सुनने वाले नूं दस दईए 8 बजे जिंदगी हसीन है प्रोग्राम च आकाशवाणी के 90 साल पूरे होण ते तुसी चमन लाल भल्ला दे गाए गीत भी सुनोगे। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। 1:10 हो रहे हैं। लो हुण परदेशी खबरां सुनो।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी? नहीं। अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: लड़ीवार
0: नाटक होया।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वज़ीर आला के लिए वी डी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सरे फहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज

की रेड्डी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़ीरे खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वज़ीरे खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर मुमालिक और साझेदार मुल्कों के वज़ीरे खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीरे खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीरे खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन व सलामती आलमी निज़ाम में बदस्तूर मरकजी हैसियत रखते हैं। वज़ीरे खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हालिया महाज आरआई से बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत उजागर हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पेचीदा और गैर यकीनी के दरमियान दुनिया में मसावी और मुश्तरका उसूलों को बरकरार

0: जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हालिया महाज आरआई से बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत उजागर हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पेचीदा और गैर यकीनी के दरमियान दुनिया में मसावी और मुश्तरका उसूलों को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ बातचीत में मुसलसल पायदार पेशरफ्त होनी चाहिए।
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
0: डॉक्टर जयशंकर ने शरीक ममालिक का उनकी मौजूदगी और ब्रिक्स तरीक़े कार को मुस्तहकम करने की खातिर जारी इश्तराक के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी साझेदार और मेंबर ममालिक दोतरफा और कसीर रुखी राब्तों के जरिए करीबी और मुसलसल राब्ते में रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज की ब्रिक्स मीटिंग नज़रियात के तबादले और तरक्की के हवाले से हम आहंगी के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने जामे कलीदी भारत इंडोनेशिया साझेदारी और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की अंजुमन के साथ इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबूज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे, जिसके नतीजे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद मजबूत शराकतदारी को एक नई सतह तक ले जाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर बढ़ते हुए राब्तों के बाद वज़ीर आज़म वहां के दौरे पर जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने इस साल जनवरी में नई दिल्ली का दौरा किया था और गुज़िश्ता 10 साल में ये उनका भारत का पांचवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की हैसियत से तीसरा दौरा था। दोनों रहनुमाओं ने अपनी मीटिंग के दौरान कलीदी जामे नौयत की साझेदारी का तफसीली जायजा लिया और कई अहम समझौतों का तबादला किया। इनमें से सबसे ज्यादा अहम कलीदी दिफाई शराकतदारी के लिए काम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाना भी शामिल है, जो कि दोनों मुल्कों के बाहमी सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। कांग्रेस के असेंबली मेंबर वीडी सतीशन केरलम के नए वजीर आला होंगे। कांग्रेस लीडर दीपा दास मुंशी ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि आफात से निमटने वाली कौमी फोर्स NDRF ने अपने 20 साल के मुख्तसर क्याम में ही मुल्क के 140 करोड़ अवाम का एतमाद जीत लिया है। वजीर दाखला ने यह भी कहा कि आफात से निमटने के सिलसिले में भारत एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है और ये दुनिया में इस तरह का कदम उठाने वाला सबसे पहला मुल्क है। वजीर दाखला ने यह बात गाजियाबाद में NDRF को सदर का परचम दिए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब शाह ने कहा कि जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई आफत आती है या आने वाली होती है तो NDRF के अमले के वहां पहुंचने के बाद लोग राहत का सांस लेते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी फोर्स को सदर का परचम मिलना निहायत फख्र की बात है। जनाब अमित शाह ने कहा कि सदर जमहूरिया ने साथ ही साथ NDRF, SDRF, पंचायत, रियासती इंतजामिया, NCC, NSS और हजारों आपदा मित्रों की खिदमात को भी सराहा।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
3: ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में बातचीत शुरू की है, जिसे सदर ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग

0: पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमराह अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफद भी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जायगार्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ एक मामले में छापे की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ये छापे गैर मुल्की करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक कानून FEMA फेमा के जाब्तों के तहत 14 लोगों और कंपनियों से वाबस्ता मकामात पर मारे जा रहे हैं। अपने बयान में ईडी ने कहा है कि इस मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है कि जायगार्ड टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से पैसे वसूल रही है। और बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आलमी नंबर 12 खिलाड़ी सिंधु ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेनमार्क की एमेली शूल्स को स्ट्रेट गेम्स में 28 मिनट में 21-13 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं सत्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के बरियान जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल को स्ट्रेट गेम्स में 21-12 21-19 से हराकर आखिरी 8 में अपनी जगह बना ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2 रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए VD सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। फौजी वीरों खबरों तो बाद फिर हाजिर होए हैं थोड़े मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतों के नाल। थोड़े नज़र करन जा रही हैं जांबाज फिल्म का गीत। आवाज़ मनहर उदास दी, गीतकार ने इंदिवर ते संगीतकार ने कल्याण जी आनंद जी।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ S. जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ S. जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र

0: में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौता

0: समझौते का क्रियान्वयन सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति

0: शी चिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री चिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 854 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने पाल। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज च। प्रोग्राम च सब तो पहले बाबा फरीद।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्ज

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके
1: रंगली धरती प्रोग्राम च हुणी तुसी पाल दे गाए लोक गीत सुन रहे सी। हुण अज दा ये प्रोग्राम खत्म हुंदा है। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 3 बज रहे ने। इस मीटर ते साडी अज दी इस सभा दे प्रोग्राम हुण खत्म हुंदे ने, पर डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते 3 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। इस मीटर ते अगली सभा दे प्रोग्राम लैके शाम 4 बजे फिर हाजिर होवांगे। उदों तक लई सानू इजाजत दिओ। नमस्कार।
2: डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा इह जलंधर केंद्र है। दोपहर दे 3 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां।

0: दसो की लेना बादशाह
1: साड़ी जैम्पर सुरखी बॉर्डर कटिया कज्जल सत जालियां नौ परांदे अट जुराबा नकली जुल्फा असली सुइयां इक दुपट्टा पतला पतला मोतियां आला सेंट जमेली ना पालश ते

0: एलो बाशो टैक्सी भी हाजिर है।
1: मैं का कितने कितने ले जाऊंगे दीप जी?
0: बिल्ला मंदिर सिंह में अंदर शहर जलंधर कला कलंदर मुगल काटे राम तलाई हेठ तलाई उत्ते रजाई सब्जी मंडी मोया दी मंडी बिच जमना दे गोते चोते वड़ी जेल कोतवाली थाना गंदा नाला मैका वाला हस्पताल परिवार नियोजन।

0: हाय हाय, वापस कदों आओगे सोनियो?
1: एक महीना दो महीने तीन महीने चिट्ठी पत्र लारा लप्पा अड्डी टप्पा एक साल फिर दो साल फिर तीन साल फिर हौली हौली किस आना ते किस जाना रड़ा रप्पा शोर शराबा फिर मुकदमा नार तरीका फिर तलाक ते
0: बस करो जी।

47.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है हुण तक दियां मुख खबरां।

यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले स्टूडियो दी कड़ी मुताबक 4:04 होण वाले ने। पेश है प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत।

सिर नाही दातार अपना नाम देह, गुण गावा दिन रात नानक चाउ एह। अकाल पुरख नाल डाढ़ी प्रीत रखन वालियां जीव रूपी स्त्रियां दी परमेश्वर दे चरणा विच ऐसी ही बेनती हुंदी है, यही जाचना हुंदी है, ते ओ ऐसा ढो पालदी है, ऐसा संजोग पालदी है, जिस वक्त कोई सज्जन प्यारा मिले, कोई ऐसा संजोग बने कि रसना उस प्रभु दा नाम उचारदी रवे। से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सर्वन कर दिया भाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: जोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई भगवंत सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसमीर सिंह।
1: सूही महला पंजवां। से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावै गुण सदा रसाला। रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करें बसै तिसनेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सुजाना। यह पावन पवित्र रचना धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण की हुई सूही राग अंदर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 743 ते अंकित है। गुरु अर्जन देव जी बेनती करते हैं कि हे परमात्मा, जिमें तेरे भगत जन तेरे प्यारे तेरा नाम जपते हैं, मेरे ते भी कृपा कर, मैं भी तेरे गुण गाँदा रहा। तेरा नाम साडे वास्ते आत्मक जीवन है। जो भी मनुख जो भी प्राणी तेरा नाम जपता है, तू उन्हां दी रचना ते वसदा है। श्री सुखमनी साहिब बाणी अंदर फुरमान है, प्रभ जी वसै साध की रचना। तू आप ही अपने प्यारियां नूं नाम दी दात दे के आत्मिक तृप्ति दिंदा है, क्योंकि तू ही समर्थ है, नाम दी दात देन दे योग है। राग वढ़हंस की वार अंदर धन धन गुरु रामदास जी दे बचन हन, हर नाम हमारा भोजन, सत्ती प्रकार जित खाया हमको तृप्त पई। हे वाहिगुरु जी, तू ही नाम दी दात देन वाला है ते सारियां तो सियाणा है। विचार वाले फरमान दियां रहाओ वालियां पंक्तियां तो विचार आरंभ करते हाँ। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावै गुण सदा रसाला। रहाओ सुन बेनती का अर्थ है मेरी अरदास सुन। प्रभ तो भाव है हे प्रभु दीन दयाला। दीन दयाला का अर्थ है दीना गरीबां उत्ते दया करन वाले। गावै गांदे हन रसाला रस भरे। गुरदेव फरमाउंदे हन हे दीना उत्ते गरीबां उत्ते दया करन वाले प्रभु, मेरी बेनती सुन। जिवें तेरे प्यारे जन सदा तेरे रस भरे गुण गाते रहिंदे हन, तिवें मैं भी गाँदा रहा। गुरु अर्जन देव जी आसा राग अंदर बचन करते हैं, जिहड़ी जीव इस्त्री गुरु की वडियाई दे गीत गाँदी है, वह आत्मक आनंद माणदी है ते वह सदा थिर रहन वाले प्रभु दे मन नूं प्यारी लगती है। गुरबाक है गुरबाणी।

सतगुर सबद उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार ते मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द का गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उनां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343 शहर 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआर 854 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स से डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दाए जलंधर केंद्र है। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वीरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 ते पेश करांगे देहाती प्रोग्राम, जिस कम दियां गल्लां मंडियां दे पार शहद मक्खियां दी देखभाल बारे जानकारी लवांगे वाईएस पड्डा हुणा कोलों। शाम 7:40 ते सुणोगे समाचार दर्शन, 7:50 ते प्रोग्राम आबशार च सुणोगे चन गजलां। रात 8 समा रहेगा जिंदगी हसीन है दा, रात 10 सुनोगे मुख खबरां। रात 10:02 ते सुर साधना प्रोग्राम च सुनोगे राग बागेश्वरी च पंडित हुसन लाल वल्लों वजाई गई वायलिन।

एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे।

उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: जहाज बीती रात होरमुस पड़जोड़ पार करके ते मौसम विभाग वालों पंजाब ते हरियाणा में 16 तो 19 मई तक जबरदस्त गर्मी पैण दा येलो अलर्ट जारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: हाँ जी तेजा सिंह जी बचाले, देखो आप सारे जानने हैं कि दुध बाद का किता धंधा ऐसा है जिदे च बहुत सारिया चीज़ा, क्योंकि यह एक संपूर्ण किता धंधा है।
1: जी
0: दुध के नाल जुड़िया होर बहुत सारिया जिदा कहने कि उद्योग इंडस्ट्री है। हुण आप दुध की पैदावार की आम तौर पर जो घर आप करते हैं भी दुध तो दही जमा लिया
1: बिल्कुल
0: है ना, मक्खन बना लिया, घ्यो बना लिया, लस्सी बना ली, ये तो साढ़े उत्पाद नित दे ने जिहड़े
1: मुड़के
0: घर
1: डोल लो लस्सी का डोलू करके उदे वंड दे दिया ते
0: है
1: पिंड
0: कि
1: नू।
0: नहीं। सो इस करके बड़ी मतलब गुणवत्ता भरपूर चीज़ है, पर ये चो जे आप गुणवत्ता पछाण के ते गुणवत्ता भरपूर ही उत्पाद जिहड़े तैयार करिए
1: जी
0: ते फिर सोने के सुहागे वाली गल हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: सो गुणवत्ता भरपूर दुध उत्पादन के बाबत डॉक्टर रेखा होरां कुछ जानकारियां साझियां कीतियां, आप
1: जी
0: साझे करते हैं।
1: जरूर जी।
2: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर रेखा चावला है। मैं कॉलेज ऑफ फूड साइंस अते टेक्नोलॉजी विच एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हाँ, जेड़ा गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंसिज़ यूनिवर्सिटी विखे पैंदा है। अज असी गलबात करांगे गुणवत्ता भरपूर दुध उत्पाद अते उस दे मंडीकरण बारे। सब तो पहला जे असी गल करिए तां साडे दिमाग च क्वेश्चन आंदा है, एक सवाल आंदा है कि दुध दी गुणवत्ता तो भाव की है, इस तो की मतलब है। तो सब तो पहला मैं दसना चाहवांगी दुध की गुणवत्ता जिसनों आम तौर पर वैल्यू एडिशन भी कहा जाता है, यह दो वक्रे वक्रे शब्दों तो बनया होया है, वैल्यू तो एडिशन। जेकर असी ये मुढ़ले तौर पर इनू देखिए तो वैल्यू मीनस मुल तो एडिशन मीनस वाधा। इट मीनस के जे असी दुध न कुछ कच्चे दुध न प्रोसैस करके इस विच कोई पैकेजिंग तकनीक लगा के या कोई

0: फॉलोअप करिए कि उन्हां नूं कीड़ियां कीड़ियां औंकड़ां दा जिहड़ा है सामना करना पै रहा है, कित्थे उन्हां नूं परेशानी आ रही है, किवें असीं इह सारियां चीज़ां नूं दोबारा तो एक बारी रिवाइव करते हाँ, चैक करते हाँ कित्थे उन्हां तों गलती हो रही है, किहड़े पासे उन्हां नूं होर उन्हां दा जिहड़ा हथ है सानूं फड़ना है, भावें उह पैकेजिंग दा रस्ता हो जाए, भावें उह मार्केटिंग दा रस्ता हो जाए, जिथे भी उन्हां नूं साडी लोड़ पैंदी है असीं टाइम अनुसार फॉलोअप करते रहने हाँ, तो उन्हां दे जिहड़ा हथ है वह हमेशा फड़ के रखते हाँ, तो हमेशा असी उन्होंने हिदायत दिने हाँ कि कितने ना कितने तुसी पैकेजिंग वाले रस्ते जाओ, कच्चे दुध नूं छड़ के प्रोडक्ट वाले पासे जाओ, इसे राही तुसी मुनाफा वध कमा सकते हो। तो जिहड़े उद्यमी किसान है बहुत ही ज़्यादा हुमा के इस पासे आ रहे ने, हुण कुछ दहाकियां तो जिहड़े साडे डेयरी किसान ने वो चाहते ने कि कच्चा दुध किसी भी इंडस्ट्री च ना पान, अपना काम शुरू करन। ते एहो जे एग्जाम्पल मैं तुहानू एक कोट भी करना चाहवांगी इस शो दे राही कि असी पिछे ही कुछ फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट असी पिछे अपना किता है यूनिवर्सिटी दा, ते उहदे विच साडे कोल बहुत सारे उद्यमी डेयरी किसान जिहड़े आए ने साडे कोल ट्रेनिंग लैके गए ने, ते उहनां ने अपना काम खोलिया है ते बहुत ही वधिया काम कर रहे ने। कोई किसान अपना घ्यो दा काम कर रहा है, कोई पनीर बना रहा है, तो इसे राही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अगे जिहड़ी सफलता है प्राप्त की है। तो सानू भी एज ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर बहुत वधिया लगता है जदों वधदे ने अगे ते अगे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते ने, ये साढ़े एक तरह के ब्रांड अंबेसडर ने, जिथे भी यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच सकती या यूनिवर्सिटी की गल नहीं होंगी, ये जिहड़े साढ़े उद्यमी किसान ने डेयरी किसान ने ये साढ़े ब्रांड अंबेसडर की तरह काम करते हैं, तो हमेशा ही यूनिवर्सिटी किसानों लिए किसान वीरां लिए हमेशा ही खड़ी है, तो जिथे भी उन्होंने औंकड़ा आनगियां कोई भी जरूरत होएगी हमेशा ही यूनिवर्सिटी उन्होंने हेल्प करेगी। थैंक यू जी।
1: तेजा सिंह जी दो कबूल गाउन दे लाउने आ।
2: हाँ जी।

0: हाँ जी बच्चों देखो कितने धंधिया के तेजा सिंह जी जिदा कहना भी बहाने मारन तो 100 मार लो, जे तुसी काम करना हो तो 100 काम ने तुहाडे सामने खड़े,
1: बिल्कुल खड़े है।
0: बंदे नू वेल ही नहीं सारी दिहाड़ी, तो बंदा हर कोई यही कहता भी यार मैं वेला हाँ
1: बिल्कुल
0: मैनू कोई काम है नहीं, नजरिया फिर उही आ गया पहला वाली जिहड़ी है कि असी सोच साडी जिहड़ी है ना
1: जी जी
0: असी उस चीज बारे सोचते नहीं,
1: बिल्कुल सही गल
0: है ना, कोई भी काम है उदी शुरुआत ताडी सोच तो होनी है, जे तां ताडी दिलचस्पी बनू ताडी सोच ताडी दिलचस्पी बनाओ उस पासे नू, फिर तुसी जानकारी लोगे ते काम तां अपने आप सीधा पैणा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हुण शहद दीआं मक्खियां ना कोई इहदे च कहिंदे हुंदे ने वी एडे जमीनां दे टुकड़े चाहीदे है, ना आपां ने कोई बोर कराउण दी लोड़ है,
1: जी
0: ना कोई सुहागे फेरन दी लोड़ है,
1: बिल्कुल
0: है कि डब्बे है जिथे तुसी मर्जी रख
1: रख
0: लो,
1: लो बिल्कुल
0: वाह
1: बिल्कुल
0: छांदार दरख्त होण फिर सोने दे सुहागे वाली गल हो जांदी है।
1: बिल्कुल सही गल है
0: सो शहद मक्खियां दा किता धंधा बहुत वधिया किता धंधा है,
1: जी
0: अपने घर दियां तां तेजा सिंह जी आराम नाल लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने क्योंकि
1: बिल्कुल
0: शायद एक संपूर्ण खुराक आपां सारे
1: हाँ
0: जाणदे
1: बिल्कुल
0: हां।
1: सारे जानते हैं
0: सो इस करके इन्हां चीज़ां दा जे आपां थोड़ा जिहा सर्वेखण करदे हाँ लेखा जोखा करदे हाँ, हुण आह दिन ने शहद मक्खियां जिन्हां ने पालियां उन्होंने देखभाल भी करनी क्योंकि
1: बिल्कुल
0: गरमाइश जिहड़ी
1: गरमाइश
0: है
1: वध
0: ना
1: रही है
0: इहदा प्रभाव वधदा है हर चीज़ 'ते प्रभाव
1: जी
0: पैंदा
1: जी जी
0: है।
1: जी आ
0: इसे बाबत डॉक्टर वाई एस पांधा होरां दे नाल कुछ जानकारियां सांझियां हुई आपां सांझियां करदे हाँ।
1: ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ
2: ਡਾਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਸੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੂ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੁੰਬ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
3: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

हाँ, गल भी बिल्कुल सही है। जिहड़ा टाइम ही हथों निकल गया, जो गुजर गया, उहदे उत्ते असीं सोचणा, टाइम क्यों उहदे उत्ते लगाउणा, जो निकल गया बहुत वधिया निकल गया। लो जी, प्रोग्राम चल रहा है आबशार, और इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे सामने अगली जिहड़ी गज़ल है पेश है, पंकज उदास हुणां दी आवाज़ दे विच, जीए तो जीए जाए।

नमस्कार। आकाशवाणी एक बड़ा अच्छा है प्रयत्न। आकाशवाणी तो जो प्रोग्राम होंदे ने शुरू तो ही जदों तो असी होज संभाली अदों तो आकाशवाणी दे नाल मैं जुड़िया होया। जिन्हें मेरा जन्म पाकिस्तान च होया, पाकिस्तान तो इत्थे इंडिया च आए फिर, और मेरा 47 दा जन्म है। और 47 तो बाद जदों होज संभाली 1956 1956 1956 ते लोकां ने घर अपने कईयां ने रेडियो रखे होंदे सी ते मेरे कन्ना च आवाज़ पैनी ते मैं बड़ा उत्सुक होना भी साढ़े घर रेडियो है नहीं ते की करिए। मैनू फिरदे तुरदे, क्योंकि मैं असल विच नेत्रहीन होने के नाते पाकिस्तान तो आ रहे से ते मेरी आई साइट उस वेले चली गई ते बचपन जड़ा उत्थों लैके हुण तक ब्लाइंडनेस च ही सारा काम किया है। और आकाशवाणी का ये इन्ना सहयोग है कि मैं भुल नहीं सकता उन्हों। मैं दसा कि साढ़े घर रेडियो नहीं सी ते उस वेले मैं पड़ोसियों के घर बैठ के थोड़ा जा साढ़े घर तो दूर सी वह घर, और मैं प्रोग्राम जाके सुनते रहना और उत्थे बैठे रहना उन्होंने घर। और मैनू कई बार इस तरह हुंदा सी ते खाना खाण वास्ते भी मेरे घर दे मैनू बुलाना किसी बुलाण भेजते सी, लगाव सी शुरू तो ही। और फिर हौली हौली क्योंकि मैं ब्लाइंड सी ते मैं अमृतसर ब्लाइंड स्कूल च दाखिल हो गया, उत्थे रेडियो दा टाइम फिक्स सी, पर मैं चाहुंदा सी कि भई रेडियो जड़ा है वो हर वेले चलदा रहे, कन्न च आवाज़ पैंदी रहे। और पहले पहले मैं सोचदा सी कि शायद रेडियो च अंदर बंदा बैठदा है वह बोलता है, पर खैर ये सारा सारा समझ आ गया हौली हौली। और बड़ा मन खुश होया कि बहुत अच्छी चीज़ है रेडियो। और जदों थोड़ी होश संभाली तो रेडियो स्कूल साडे लगता सी, शाम नूं न्यूज़ वगैरह सुनन च सदाए वतन प्रोग्राम आंदा सी जिहदे च हेमराज शर्मा, सुदर्शन फाकिर और जानकी दास भारद्वाज, इस तरह होर जो लोग सी वो आंदे सी और बड़ा अच्छा लगता सी। फिर देहाती प्रोग्राम सुनना, एक प्रोग्राम आंदा सी पर्वत की गूंज, उसले हिमाचल च रेडियो स्टेशन घट सी शायद ते हिमाचल च वास्ते पर्वत की गूंज प्रोग्राम शाम नूं आंदा सी। मेरा संगीत दे प्रोग्रामां नाल बहुत लगाव सी क्योंकि ब्लाइंड स्कूल च सानूं संगीत ज़्यादा ध्यान नाल सिखाया जांदा सी, क्योंकि आकाशवाणी दे हुण 90 साल हो रहे ने और बहुत तरक्की कीती है, और इन्ना मज़ा आंदा सुन के सारा कुछ। बहुत वधिया एडमिनिस्ट्रेशन और बड़ी अच्छी इहदे वास्ते तरक्की दे काम हो रहे ने आकाशवाणी दे। हुण ते फोन दे विच वी आकाशवाणी आंदा है ते रेडियो प्रोग्राम च सुनदे सी 3-4 वारी म्यूजिक आंदा सी, शाम नूं भी, दोपहर नूं भी, सवेरे भी, रात नूं भी। और सानूं स्कूल च रात नूं सुनन नूं परमिशन सी। तुहानूं मैं दसां कि इन्ना लगाव मैनूं हो गया और मेरे एक दो दोस्त होर सीगे, असी सवेरे नहा धो के ते बाहर स्कूल तो बाहर चाह पीन चले जाना, उत्थों संगीत दे प्रोग्राम उत्थे बैठ के सुनना, और इन्ना अच्छा लगता सी। जिथे भी किते फिर ट्रांजिस्टर आए, और ट्रांजिस्टर जिहड़े लोगों को नाल सीगे, इन्नी तरक्की हो गई कि बहुत मन प्रसन्न हुंदा है। और मैं जिन्ना कामयाबी मैनू मिली है ना वो रेडियो दे डिफरेंट प्रोग्राम सुन के, तो मैं तो कामयाब। मैं प्रोफेसर चमन लाल भला, और जिंदगी च जो अट्रैक्शन मेरे वास्ते अपने रेडियो दी सी वो होर किसी चीज़ की भी नहीं सी। ते ए प्रोग्राम सुन सुन के इन्नी तरक्की की, सानू स्कूल च मान लो 30% टीचर ने सिखाया, और बाद च मैं हुण तक, हुण तो खैर स्थिति होर हो गई, मतलब जदों मैं मैट्रिक पास की, बीए की, एमए की, एमए स्पैशली की, उहदे विच रेडियो तो मैं जिन्ना सिख्या है 30-40% सानू स्कूल च, या स्कूल च ही मैं सिख्या, क्योंकि बाकी मैं सब प्राइवेट नौकरी दे नाल नाल कीता। और इन्ना अच्छा लग्या कि मैं बाकी दा जिहड़ा हुण मैं लोगों को यह कहना कि तुसी रेडियो दे प्रोग्राम सुनिया करो, संगीत दे खास करके, उन्हां विच तुसी जे तुहानूं टीचर 40% सिखाउंदा है तुसी 70-75% समझ सकते हो, सीख सकते हो। और इस करके कि परमात्मा की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा हुई कि मैं संगीत दे विच सितार बजान च अप्रूव होया, वोकल क्लासिकल म्यूजिक च अप्रूव होया, और लाइट म्यूजिक

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ली रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही। जे कही है ता फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी।

0: केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: लो जी, असी मुड़ तो हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे विच। जी हाँ, जिंदगी हसीन है वास्ते जिहड़ियां आपां गल्लां पहलां भी कीतियां और उसी सोच नूं उही गल्लां नूं आपां फिर तो अगे वधाउने आ। जी हाँ, जिहड़े जिंदगी नूं अगर असी हसीन बनाउणा है तो दिलां दे रिश्ते मजबूत करने पैणे आ। लोकां नाल रिश्ते मजबूत करन तो पहलां अपने नाल साडी जिहड़ी बॉन्डिंग है, रिश्ता मजबूत होना बहुत लाजमी है। जिहड़ा दिल दा रिश्ता वह हुंदा है जो बिना कहे हर जज्बात समझ लैंदा है। ना कोई शर्त होवे ते ना कोई फासला होवे, सिर्फ प्यार ते अपनापन ही इसकी पहचान हुंदी है। और ये सारियां चीज़ां किसे होर दे नाल होवे या ना होवे वो बाद दी गल है। सब तो पहला किसे भी इंसान दे विच अगर उदी जिंदगी हसीन वह बनाउणा चाहुंदा है, सब तो पहला ये सारियां क्वालिटीज़, ये सारियां खूबियां उहदे विच होणियां बहुत लाजमी है। फिर ही वह किसी नाल मुहब्बत, प्यार या अपने आप नूं फ्री महसूस करेगा। जी हाँ, इदा दियां बहुत सारियां गल्लां असी करांगे। पहलां असी एक गीत सुन लईए, उस तो बाद गल्लां बातां करते हैं।

जी हाँ, जे जिंदगी हसीन करनी है, सब तो पहलां जे आपां गल कीती, खुद नाल प्यार करना जे लाजमी है, अगर असी ओ वाला पड़ाव पार कर लिया है, असी खुद नाल मुहब्बत करन लग पए, तो फिर समर्पण बहुत जरूरी है, सरेंडर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कि जे विश्वास कीता है तो फिर अखा बंद कर लो, फिर तुहानू जरूरत ही नहीं पैंदी किसी जजमेंट च, बंदा पैंदा ही नहीं, ना कोई फालतू की सोच, बस सिर्फ जो हुंदा उस कुदरत दी रहम नुमाई दे हेठ ही हुंदा है। लो जी, जिंदगी हसीन है प्रोग्राम चल रहा है, इस दिनाली असी अगला गीत थोड़े सामने पेश करते हैं। आनंद माणो जी इस गीत का।

बिल्कुल सही गल है, जिंदगी का सुकून लभना भी बहुत लाजमी है। ये लभना सिर्फ अंदरों है, अंदरों अंदरली झाती मारांगे तो पता लगेगा कित्थे सुकून है तो कित्थे नहीं। जी हाँ, इस दे नाल ही साडे अज दे इस प्रोग्राम का अखीरला गीत तुहाडे सामने पेश है, आनंद माणो जी इस गीत का। और जिंदगी दे विच कदी रुकना नहीं है, जिंदगी चलदी दा नाम है। और इस चलदी हुई गड्डी दे विच कदी भी उदास नहीं होना, हमेशा अपने आप नूं मोटिवेट रखना, अपने आप नूं एक आशा नाल भरिया हुआ रखना, मेहनत दब के करनी है। लो जी, सलाम करदा वां इस दे नाल ही, आनंद माणो जी इस गीत का।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल

0: मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज

राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा

0: कर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. interacting with

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी

0: देते कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है, और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है, और AI बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में, और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है, इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो 4-on-1 प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है, और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया के डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया है, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है, हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है, उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप पे तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय

0: मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी, कल लॉन्च किया है। ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ARG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किए हैं, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMR WF का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है, अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा, ARG डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू हम भेज भी रहे हैं। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है, और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा, वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं, मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICR सेंटर्स, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए, और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव का जो लोग है, जो किसान, उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल के फिर उसका गाँव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया

0: कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है। फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट, इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेज, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे।
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है जो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोकास्ट क्या है और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं और सैटेलाइट की भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

जी हाँ बिल्कुल सही है। गीत दियां पूरियां पूरियां लाइनां स्टीक बैंदियां ने साड़ी जिंदगी दे उत्ते, क्योंकि जिंदगी तदी हसीन होएगी जे असी तैयार होवांगे जिंदगी नूं अपने गले लगाउण वास्ते। उहदे लई सानूं अपने अंदर काम करना पैना है, उहदे लई खुद लई टाइम कढ़ना, बाकियां कम्मां तों बाद अपनी डेली रूटीन दे विच चाहे कुछ पल होण अपने लई जरूर कढ़ो। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है सरगम, इस दे उत्ते आपां बहुत सारियां गल्लां करांगे। इस दे नाल ही पहलां तुहानूं अगले गीत वल नूं लै चलीए, आओ सुणदे हां अगला गीत इस प्रोग्राम दा।

जिया कहिंदा है कि मुसाफिर हाँ मैं, राहां नाल यारियां ने मेरियां, तेरे नाल सफ़र होवे तां हर राह सोहनी लगती है, मुसाफिर दे दिल विच हमेशा एक अधूरी कहानी हुंदी है, राहां चलदियां चलदियां दिल भी किसी का हो जाता है, मुसाफिर दी जिंदगी विच मंजिल तो वध यादा हुंदियां ने, सफ़र लंबा सी पर तेरियां गल्लां ने थकावट भुला दित्ती, मुसाफिर हाँ पर दिल अज भी तेरे शहर विच रुकिया है। कुछ लोग सिर्फ सफ़र विच मिलते ने ते जिंदगी बन जाते ने। लो जी, इसे

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित

0: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economies.

0: जी दोस्तों, सचमुच भांडे कली करा लो। वैसे तो जी भांडे जिहड़े है ना, वो हमेशा उदों ही कली हुंदे सी जदों बहुत पहला ये रिवाज हुंदा सी कि साडे भांडे जिहड़े हमेशा चमकदे रहने चाहीदे। और आंदा हुंदा सीगा कोई ना कोई भाई और उसने आके फिर भांडे चमका देने। पर इस वेले साढ़े प्रोग्राम नूं चमकाउण दे लई साढ़े बहुत सारे स्रोते कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम सौगात विच पहुंचण दी। सौगात प्रोग्राम च तुसीं पहुंचण दे लई दोस्तों करना की है, 0181-2342-171 नंबर डायल करके साढ़े इस प्रोग्राम च आ जाण। जिवें कि ये साढ़े पहले कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हैलो,
0: जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? लुधियाने दा जट हो गया ते फिर दिल्ली दी कुड़ी हो गई। ते ये ता फिर वाकई जी पता लग गया कि मनजीत कौर जी पहुंच गए ने दिल्ली तो।
1: ਕਿਆ
0: ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ।

है, दिलावर खान, हसीना बानो, अली जनाब ते लड्डू होना ने सानू रघुबीर नगर तो ये सुनेहा लाया ते इन्हों का सुनेहा असी कर लिया शामिल। ते ये साढ़े दोस्त ने जी अस्तूपुरा जिला मऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मुहम्मद सादिक अंसारी, गाजीपुर तो आजाद अली अनवर, ते रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद ते इन्हां दे परिवार दे बहुत सारे दोस्त। लो जी सारयां दी रली मिली फरमाइश से सुनते हैं अमरिंदर गिल दी आवाज़ दे विच ये गीत।

0: जी दोस्तों, तीन रंग नहीं लभने बीबा, बिल्कुल गल्लां पता शुरू हो गई हैं जी। इसी तरह दियां कि वैसे तो रसगनिया साहब के घर तो तीन रंग इस वेले बिल्कुल हाजिर ने, पर लभने नहीं, ये फ्यूचर की गल हो जाती है। पता नहीं जी कदों की इंसान के नाल वापर जाना है, पर असी हमेशा ही चाहते हैं परमात्मा अगे दुआ करने हैं कि तुसी सारे ठीक ठाक रहो, अपने परिवार के विच खुशियां माणो, आनंद माणो, तो इसी तरह खुश रहो। लो जी कॉलर आ गए ने, दिखिए जी किहड़े दोस्त ने। हेलो
1: हेलो, सत
0: हेलो,
1: श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल
1: मैं संतोष, मैं केरल मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ सर।
0: जी। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर आपको भी, मैं आपको एक दिन में बोल रहा हूँ सर, मीठी बोली बोल के और ना सताओ, अपना दिल बहलाने के लिए संतोष बेचारा के दिल पे तीर मत चलाओ सर।
0: ऐसे भी होता है क्या?
1: होता है ऐसे, जब कोई भी प्यार से बात करता है ना सर, तो वो है ना दिल है ना, पता नहीं दिल है ना, दिल मानता नहीं है।
0: दिल है कि मानता नहीं, क्या बात है जी। बिल्कुल बात सही है
1: और
0: जी, क्योंकि ये दिल जो है ना, इसको कौन समझाए।
1: सर आप सबसे जो है ना, आप इतना प्यारा एंकर है सर, सौगात में मैं शायद मेरे को छुट्टी इधर मिल जाए तो मैं पक्का मैं जलंधर आऊंगा। मैं लगभग सर मेरे को 8 साल हो गया, मैं केरल से उधर मैं नहीं आया हूँ, और मेरे को टाइम लगेगा तो मैं आपसे पक्का मिलूंगा सर।
0: बिल्कुल, हम भी आपसे मिलेंगे। और संतोष जी, जिस तरह से आप बात करते हैं ना, इसी तरह से लगता है कि आप
1: सर
0: हमारे।
1: मैं पूरा लाइफ में सर, मैं जो भी हूँ ना सर, मैं सौगात से, और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, मेरा नाम संतोष है। संतोष एक चीज है जो इंसान को बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए, और मैं ये भारत सरकार को मैं ये चीज बोलने के लिए चाहता हूँ, कोई भी सरकारी जो किसी का लड़का करता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं
0: जी
1: उसका है ना, उसके मम्मी के नाम से 10% उसका लड़का का पैसा जाना चाहिए, और 10% उसका है ना उसका डैडी के नाम पे जाना चाहिए, 20% जाना चाहिए। कोई भी जो है ना, भारत सरकार से मैं अपील करता हूँ, जो है ना माँ बाप किसी है ना, जो है ना, ये मैं इतना वीडियो देखता हूँ, जो अनाथ आश्रम पे ना जाए वो, ये
0: संतोष
1: दस
0: जी
1: परसेंट ये ना मम्मी के नाम से जाना चाहिए, 10% डैडी के नाम से जाना
0: क्या
1: चाहिए
0: बात है।
1: सर।
0: संतोष जी, मेरे को ये सुनकर ना इतनी खुशी और इतनी संतोष हो रहा है, ये बात सुनकर कि इस तरह के लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए जो है वो बचत के पैसे जो हैं वो कुछ ना कुछ रखने चाहिए, क्योंकि जो
1: सर मैं ये चीज का, आपका इतना टॉपिक अच्छा है सर, मैं इधर केरल में मैं हूँ, और मैं ये चीज मैं बोल रहा, मैं ना ये माँ बाप है ना जो पैदा किया सर, इससे बढ़ के भगवान भी नहीं है, ये कोई बोलता है ईश्वर अल्लाह है ना, जो माँ माँ पाल के मेरे को बड़ा किया, उससे बढ़ के कोई नहीं होता। जो इंसान है ना माँ बाप को ठोकर खाने के लिए छोड़ता है ना रोड पे,
0: जी
1: वो नरक में इंसान जाएगा, नरक में, मैं हिंदी में बोलता हूँ,
0: बिल्कुल
1: वो नरक
0: बिल्कुल।
1: में जाएगा वो।
0: देखिए, जो अपना माँ बाप का ना हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता।
1: ये सर मैं वही ना अपील करता हूँ, और मैं ये चीज मैं सर मैं बोल रहा हूँ, जो कोई भी पुलिस का वर्दी पहनता है उसका वो चीज का सिस्टम का है। अभी सुल्तानपुर लोधी का वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं इधर हूँ,
0: जी
1: और ये ना वर्दी का भी, जो कोई भी पुलिस वाले कोई बोलता मैं डीएसपी एसपी हूँ, तो वो अपना है ना वो सिस्टम पे चले, किसी को परेशान ना करे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला है ना।

0: सर बिल्कुल ठीक है संतोष जी, और इसी तरह से होना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम जो हमारे भारत का है बना हुआ उसको फॉलो करेंगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: बिल्कुल सर, मैं ये चीज़ कहना सर, मैं है ना पंजाब का ज्यादा वीडियो है ना सर, पंजाब का वीडियो ज्यादा वायरल होता है सर, कोई पुलिस वाली ये ना बस में है ना ये पिस्टल निकाल के आप देखना ये कितना वीडियो वायरल हुआ है।
0: हाँ
1: पंजाब पुलिस पे ये ना अच्छा नहीं होता है।
0: बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो इस तरह से जो आपने मैसेज दिया है बिल्कुल जो हमारे पुलिस भाई सुन रहे होंगे तो इस पर जरूर ध्यान देंगे।
1: नहीं सर, आप है ना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ सर, मैं केरल में हूँ, केरल का वीडियो देखे कोई भी पुलिस वाले किसी को है ना जो है ना परेशान करता है?
0: नहीं तो मैं नहीं करता
1: है?
0: नहीं करते हैं।
1: जो इधर का है ना सर पढ़े लिखे सबसे राज में पढ़े लिखे नंबर वन केरल होता है सर, इधर परेशान किसी को नहीं करता, गलती होगा उसका चलान काटेगा, परेशान नहीं करता है,
0: परेशान नहीं करता। इसी तरह से ही होना चाहिए संतोष जी, पूरे भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं तो इसमें सबको एक होकर अगर हम चलेंगे तो भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। तो इसी तरह से जो है वो सभी प्रयास करेंगे तो ये विश्व गुरु बनेगा भारत। तो आज फिर संतोष जी कौन सी फरमाइश लेके आए हैं आप?
1: सर आप कोई भी आप अपने पसंद का सॉन्ग सुना दीजिए, वो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं जब तक आपका प्रोग्राम चलता है मैं तब तक मैं सुनता हूँ सर, इधर बारिश होने लग गया सर।
0: आए है, क्या बात है, आप श्रीलंका में है ना आज?
1: इधर है ना सर, इधर समुंदर है ना 1 किलोमीटर है सर।
0: ओए क्या बात है, फिर तो आप एंजॉय कर रहे हैं जी आज, और बारिश भी हो रही है और पास में समुंदर भी है और समुंदर की लहरें जो हैं ऊंची ऊंची आ रही होंगी, तो आप प्रोग्राम का आनंद मानिए। और ये मैं गीत सुनाता हूँ आपको कंठ क्लियर की आवाज में संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: ठीक है सर,
0: ओके बाय।

जी दोस्तों, तेरे नैणा वर्गी नैण कित्थों मुल लै लईए। क्या बात है जी, गल तो सही है। ये नैण जिहड़े ने ना बड़े अनमोल हुंदे ने, ये ले नहीं जा सकते। मुहब्बत दे विच कोई भी चीज़ जिहड़ी है ना वो अनमोल हुंदी है। इस करके तुसी भी इस प्रोग्राम नू मुहब्बत करो, खलूस करो और

जी दोस्तों, तेरे नैणा वर्गी नैण कित्थों मुल लै लईए। क्या बात है जी, गल तो सही है। ये नैण जिहड़े ने ना बड़े अनमोल हुंदे ने, ये ले नहीं जा सकती। मुहब्बत दे विच कोई भी चीज़ जिहड़ी है ना वो अनमोल हुंदी है। इस करके तुसी भी इस प्रोग्राम नू मुहब्बत करो, खलूस करो और इन्ना क प्यार दियो इस प्रोग्राम नू कि हमेशा ही तुहाडियां कॉल्स चलदियां रहन। इस प्रोग्राम दे विच तुहाडा दोस्त शाम शर्मा हाजिर है इस वेले। इस प्रोग्राम नू लैके तुसी भी इस प्रोग्राम च अपनी कॉल लगा सकदे हो। 0181 23 42 171 नंबर डायल करो, अपने पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकदे हो। और जिहड़े दोस्त सानू वट्सएप मैसेज करना चाहुंदे ने अपने पंजाबी गीतां दी फरमाइश करन दे लई, 94655 36077 9465 3607 इस नंबर दे अपने वट्सएप मैसेज तुसी कर सकदे हो। लो जी कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? जी जी, ज्ञान सिंह खिंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। ज्ञान सिंह खिंडा साहब, इस वेले नेड़े हो खेतां दे? मैं क्या खेतां दे नेड़े बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हो कि घर? अच्छा, चंगा लग रहा प्रोग्राम। अज केड़ी फरमाइश लेके आए हो? रोटी हक दी खाइए नहीं चाहे बूट बालिशां करिए। शुक्रिया खिंडा साहब कॉल करन दे लई। सुनाने आ तुहानू इह गीत, कुछ वट्सएप मैसेज शामिल कर लैने आ। इह साडे दोस्त ने जी करनवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुछो कैंचियां बठिंडा तो साडे दोस्त आए ने, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करनवीर करन, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत ते परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त ने। बड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ते इन्हां दे परिवार दे बहुत सारे दोस्त। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता राणी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू ते इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त ने। लो जी, पिंड दे डाखना निमाणाबाद नेड़े सफीदों मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करनजीत कौर होना ने सानू फरमाइश की है जी। कहिंदे गुरदास मन साहब की आवाज़ दे विच गीत सुना दिओ, रोटी हक दी खाइए चाहे बूट पालशां करिए। गल तो बिल्कुल सही है जी, जिहड़ी तुसी हक दी रोटी खानी है ना, उहदे वर्गा नज़ारा ते उहदे वर्गा संतोष किते नहीं मिल सकता।

0: जी दोस्तों, सचमुच ये जड़ी गल्लां बातां हो रही है ना कि पहली मुलाकात ये जो होंगी है ना, पहली मुलाकात उस वेले असी बहुत सारा प्लानिंग करके जाने हैं कि असी अपने महबूब नू मिलना है, असी अपने दोस्त नू मिलना है। तो उस वेले असी सोचते हैं कि मैं ये गल करूँ या मैं वो गल करूँ, तो सोचते सोचते सोचते सोचते असं सारिया गल्लां भुल जाने हैं, सिर्फ तो सिर्फ महबूब नू वेखते रह जाने। लो जी कॉलर आ गए ने, देखते हैं जी ये साढ़े दोस्त की कहते हैं। हैलो,
1: हेलो भाई, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: रंजीत बोल रहा हूँ, शंभू बॉर्डर तो।
0: शंभू बॉर्डर तो रंजीत जी बोल रहे हो,
1: हाँ जी,
0: बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: हाँ जी,
0: ठीक हो?
1: हाँ जी, ठीक ठाक, बढ़िया जी।
0: चलो आज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो? सतिंदर सरताज की आवाज दे विच गीत सुनावांगे। शुक्रिया जी कॉल करन दे लई। लो जी साढ़े कोल दोस्त ने कहा सतिंदर सरताज की आवाज दे विच गीत सुना दिओ, ते कुछ वट्सएप मैसेज ने भी शामिल कर लेने हैं। हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, ते इन्हां दे परिवार के बहुत सारे दोस्त ने। ते साढ़े कोल सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो, इन्होंने सानू फरमाइश भेजी है। तो जलालाबाद पछमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, तो निमित आहूजा होना ने सानू

जी दोस्तों, बिल्कुल छड़ मालक ते डूरा बहुता सोची ना। गल बिल्कुल सही है जी। जे इंसान ना मालक ते डूरा सट दवे, छड़ दवे उहदे उपर ही सब कुछ कि तू ही करना है, फिर देखो मालक नूं भी फिक्र हो जांदा है कि उसने तो मेरे उपर ही छड़ दिता सारा कुछ। जदों असीं आप चौधरी बन जाने हैं, आप असीं सब कुछ करन लग जाने हैं ना, फिर सोचते हैं कि मैं ही कीता सब कुछ। उस वेले इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन परमात्मा ही सब कुछ करता। पर आपां नूं जिहड़ा गुमान आ जांदा है, प्राउड आ जांदा है उस वेले।

0: बिल्कुल
1: आखिर
0: बिल्कुल
1: वो जिस भी जाने आप एक्सपर्ट जाने जान गली पे जाने जाना तो सही है।
0: हैं, बहुत पते दी गल कीती है जी।
1: अभी एक दिन कहेगा तू ही ला करो गड्डी से कदम तू ही बारी बारी ना बस ला ला तो तेल भी बचत तो होगी तो उनका जरा वाहन का खर्चा जरा उनका गड्डी भी और जो भी वाहन होगा वधिया चलेगा।
0: देखो गल बहुत सोहनी कीती है तुसी राम प्रसाद जी की, जे असी इको थां जाना होवे ते क्यों अलग अलग असी अपने बाइक्स लेके जाइए, ते कोशिश करिए कि आप इको ही गड्डी या एक बाइक ते जाइए, ते जेदे नाल ये बचत, साडी बचत दे नाल नाल
1: देखो
0: हिंदुस्तान दी भी बचत हो सकदी है,
1: देखो
0: साडे
1: हर
0: देश दी
1: बंदा
0: बचत
1: वो
0: हो सकदी
1: गोल्ड
0: है।
1: वगैरह खरीदते जाने रखते जाने बैंकों से वो रख के भी आप किराया भी देने
0: बिल्कुल
1: महंगा खरीदते भी हैं 2,000 जे तुम नहीं खरीदोगे तो आप ही एक टाइम से सस्ता होएगा।
0: हाँ ये गल सही है जी। जे असी देखो मारो मारी करते रहेंगे कि नहीं जी आप ले लीए तो फिर
1: लै लै
0: चीजा
1: के
0: तो
1: दे ही
0: अपने को रखना तो महंगा तो होना ही है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बहुत
1: देखो
0: सोहनी गल कीती है।
1: मार्केट से देखो तुम जो सब्जी कोई आती है ना
0: हाँ
1: जेरी सब्जी ज्यादा आ जाएगी तो वो सस्ती हो जाती है नहीं
0: हाँ
1: मिलती।
0: बिल्कुल, देखो ये डिमांड सप्लाई दा ये रूल चलता जी चारों पासे।
1: हाँ जी हाँ जी क्योंकि जो माल जो सब्जी जेरी ज्यादा आ जाएगी वो सस्ती हो जाती है जेरी घट आती वो महंगी हो
0: वो
1: जाती है
0: महंगी हो जाती है,
1: जब
0: बिल्कुल
1: आप
0: सही।
1: महंगी खरीदी जाओगे तो फिर सस्ती होनी नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: बाकी
0: जी।
1: तो
0: राम प्रसाद जी तुसी कुछ ना कुछ सुनेहा हमेशा देके जाने हो, तो आज फरमाइश केड़ी लेके आए हो?
1: एमी विर्क का कोई बढ़िया जिहा गाना सुना दो आज जो
0: चलो एमी विर्क दा मैं तुहानू
1: पंजाबी
0: कैंठे
1: विर्क
0: वाला
1: का नाम
0: सुनाना
1: भी
0: अच्छा है।
1: गाइए जी भंगड़ा भी पाइए।
0: लो फिर भंगड़ा तुहाडे को मैं जरूर पवा लेना है। शुक्रिया कॉल कर ली राम प्रसाद जी, ते
1: ठीक
0: कुछ
1: है ना
0: व्हाट्सएप।
1: मेरे बच्चा नजारा भी आ गया।
0: हाँ जी नज़ारा भी आ गया, तो देखो मियाँ जी भी नचण नू तैयार ने, ते आपां अज तुहानू गीत भी सुनावांगे नचण वाला ही, ते व्हाट्सएप मैसेज शामिल कर लेना नाल नाल है। ओके जी। लो जी साढ़े दोस्त ने जी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबर राही, मेहराज जहां आजाद हरिद्वार उत्तराखंड तो इन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया सी। नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंदराज शर्मा, सुरेश शर्मा, इन्होंने सानू मलोट तो व्हाट्सएप मैसेज किया है, ते पिंड फ्रांसी हिसार तो राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार डुडी, पुष्पेंद्र कुमार डुडी, तो इन्हों बहुत सारे दोस्त। लो जी सुनते हैं जी फिर एमी वर्ग की आवाज़ दे विजय गीत।

0: जी दोस्तों, जिन्ना तर तू नहीं नचदी रंगला माहौल नहीं होना, गर्म माहौल नहीं होना। क्या बात है जी, बिल्कुल सही गल है जी। जब तक तू नहीं नची उस वेले तक माहौल गर्म किवें हो सकता है। इस करके तुसी भी इस प्रोग्राम च पहुँच सकते हो 0181-2342-171 नंबर डायल करके। लो जी कॉलर आ गए ने। हैलो
1: जी, नमस्कार शर्मा जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: भूषण कटारिया मलोट बोलना जी।
0: जी जी भूषण कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: मेहरबानी जी।
0: की कर, बड़ा टाइम लाता साडे तक पहुंचन?
1: घंटा हो गया मैनू मलावदे नु, 3-4 बार रिंग गई है जी।
0: ओए होए होए होए होए, ए फिर तुसी कोशिश कर रहे सी बड़ी देर दी साडे तक पहुंचन दी?
1: हां, हुण मैं सोण लग्गा जी, मेरा कोई किराए ने ते मिलदा।
0: तुसी हिम्मत हार गए सी एदा मतलब?
1: हां जी, आज हार गया
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो साढ़े तक पहुँचने के लिए तुसी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, प्रोग्राम दे विच तुहाडी कॉल जरूर लगेगी कटारिया जी।
1: हाँ जी,
0: कटारिया जी अज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: हरजीत हरमन दा पजेबा सुना दो जी।
0: लो जी सुनावांगे जी, शुक्रिया कॉल करन दे लिए सर।
1: मेहरबानी
0: जी। ओके जी, लो ये साढ़े जन दोस्त कटारिया जी 11 बजे तो कोशिश कर रहे सन, 11:10 तो बाद कहते जी मैं लग्या, हौली हौली हौली हौली जदों तुहाडे नाल गलबात करन दा माहौल नहीं बन रहा सी ते फिर मैं हिम्मत हार गया। लो जी वट्सएप मैसेज भी शामिल कर लैने आ। इह साडे दोस्त ने जी चकला बाजार समाणा शहर तों, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता राणी जिंदल, पप्पू समाइल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल, पूरा ही खुशदिल परिवार है। कहिंदे जी असीं तुहाडा गुलाब दे फुल्लां दे नाल बहुत ही ज़्यादा धन्नवाद करदे हां जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुसीं तां हैगे ही खुश हो ते तुहाडा भी असीं इसी तरह जी धन्नवाद करदे हां कि साडे

जी दोस्तों बिल्कुल, पंजेबां जदों छणकदियां ने ना उदों फिर पता नहीं लगता कि कोलों सुहाणी लंघदी है कि नहीं लंघदी है, पर पता लग जाता है। प्रोग्राम सौगात का वेला रह गया जी तकरीबन 12 मिनट का। जिन्हें दोस्तों ने हले तक कोशिश नहीं की है ना, जरूर कोशिश करो, और जो दोस्त कोशिश कर रहे हैं वो इसी तरह कोशिश करते रहो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? जी, जनकराज जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल। अज ना थोड़ी मैनू लग रहा है फोन च थोड़ी डिस्टरबेंस है या साडे फोन च डिस्टरबेंस है। जनक जी, अज कि फरमाइश लेके आए हो? तेरी कैसे अख लग गई, गल सही है जी। हाँ लो, शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। सुनानी है तुहानू तुहाडी फरमाइश का एक गीत। लो जी, ये तो सन साडे दोस्त जनक जी, कहते ने कि गीत सुना दू लगी वाले तो कदों ही नहीं सौंदे, तेरी किवें अख लग गई। पर उस तो पहले एक वट्सएप मैसेज है जी अबोर तो, राम सहाय शास्त्री होना ने सानू जड़ा वट्सएप मैसेज भेजा सी, ते फरमाइश थोड़ी सारे दी आ गई जी, सुनदे हैं जी ये गीत।

जी दोस्तों, गल मुखी ना सज्जन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुख की। बिल्कुल जी, सज्जन नाल गल्लां बातां चलदियां रहणगियां पूरी रात, असीं तुहाडे नाल बने रहांगे और तुसीं पूरी रात साडे प्रोग्राम दे नाल इसी तरह जुड़े रहना। हुण अपने दोस्त शाम

0: छिन्नछत्र है, काम क्रोध अहंकार त्यागे, तन तन संजोग है, 68 तीरथ राज बिरागे। उही पल उही कड़ी उही पहर उही दिन उही थित उही वार सुपाग्या है, जिस समय ओ प्रभु चेते आवे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर समय दे परिवर्तन की बात की गई है, रुत्तां महीनों दे परिवर्तन की बात की गई है। श्री 12वां माझ बाणी विच पंचम गुरदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने यह समा सफल करन दे लई प्रेरणा दिती है। आओ सरवण करदे हां श्री 12वां माझ विचों इस महीने का पाठ ते व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती है ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरा।
1: हर जेठ जुड़न दा लोड़िए, जिस अगे सब निवन, हर सज्जन दावन लग्या, किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाही सन। रंग सबे नारायणे, जेते मन भावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। जो प्रभ कीते आपने, से कहिए धन। अपन लिया जे मिले, विछुड़ क्यों रोवन। साधु संग परापते, नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन।
2: जेठ दा महीना आरंभ होंदा है। जेठ दा मतलब है वड्डा। जेठ दे महीने विच दिन बहुत वड्डा होंदा है, बहुत वड्डा होंदा है। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान है, दिन बहुत वड्डा है। इस वास्ते इस वड्डे दिन नू मुख रख के वड्डे दी आराधना कर, वड्डे नाल जुड़न दी कोशिश कर। जो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। प्रेरणा इस वड्डे दिन तो ले। हर जेठ जुड़न दा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। जिस दे अगों प्रकृति दा जर्रा जर्रा झुकदा, भाव ताबिया दे चै हुक्म दे चै। जेठ दे महीने दा सतगुरु उपदेश करदे ने कि उस जेठ नू, उस वड्डे नू लोड़, उस दी लोचा रख ते उस दे अगों झुकण दी कोशिश कर। हर सज्जन दावन लग्या, किसे न देई बन। जो परमात्मा दे दामन लगे ने, उन्हां नूं कोई होर बंधन पै नहीं सकते। भाई साहब भाई नंद लाल जी महाराज का फरमान है, दस्तगरदारी बिरो दामा ने जामा रह बगीर। ऐ बंदे, जे तू हथ रखदा है तां गुरु दा दामन पकड़ ले, तां फिर तैनू कोई बन नहीं पएगा, किसी तरह की कोई भी रोक नहीं पएगी। तो साहिब कहिंदे जो सज्जन दा दामन पकड़ लैंदे ने, उन्हां नूं किसी तरह की रोक नहीं पैंदी, ना शरीर नूं, ना मन नूं, ना आत्मा नूं। रोकां कई तरह दियां ने, दुख कई तरह दे ने, शरीरक रोग, मानसिक रोग, अध्यात्मक रोग। साहिबां दा फरमान है, रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। जो हरी दे जन ने ते हरी दा दामन पकड़ लैंदे ने, उन्हां दे शरीर विच रोग नहीं आउंदे, उन्हां दे मन विच सोग नहीं आउंदे, और उन्हां दी आत्मा विच बेचैनी नहीं आउंदी। उह सदा खिड़े रहिंदे ने, सदी वी आनंद विच रहिंदे ने। कंचन वर्गी उन्हां दी काया आउंदी है। इस वास्ते साहिब कहिंदे जो हरी सज्जन दा दामन पकड़ लैंदे ने, उन्हां नूं कोई रोक नहीं पैंदी। माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाही सन। परमात्मा दा नाम असली माणक है, हीरा है, मोती है। और साहिब कहिंदे ने इह धन ऐसा है, एक दफा प्राप्त हो जाए कोई चोर चुरा नहीं सकदा, कोई सन लाण वाला इहनूं सन नहीं ला सकदा, क्योंकि ए ते

तन पलचसा कड़ी पहर तन तन थित सु वार सपागे तन तन द्योह रात है पख माह रुत सम्मत जागे तन अपी

मोहन प्राण मान रागीला बास रहे हो हियरे कै संगे पेख मोहन मन लीला। इस शब्द गायन

ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते। आप जी सरवण कर रहे सो पाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

0: सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुदे आखे लख करोड़, सच्चे सप्ता सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच त्यायन सच, जो मर जमे सो कच निकच। महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच न्याओ, वड्डी वड्याई जा नेचल थाओ, वड्डी वड्याई जाने आलाओ, वड्डी वड्याई।

करना सर्ब रजाए महला दूजा। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास, इक ना हुक्म समाए लेकिन हुक्मे करे विनाश, इक ना पाने कड लेकिन ना माया विच निवास, एव पियाखना जपई जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानी है जाको आप।

0: निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगट दिनयागर गहर गंभीर अथायत बढ़ सो पर सदा सब विदलत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
1: जाको मुन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कब बहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेवा मुन गह ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को।
2: नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोक प्रगासे देखत दर्श पटक परम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा तिलुभित आलिस मूज कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदास।
3: तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत

0: परम पद पायो।
1: नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जोगण अमरी जय देव तलोचन नामा अवर कबीर पणं। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो।
0: मनसाकार सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं। बाचा कर सिमरन तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। करम कर तो दर्श परस पार सर बल भट जा।

0: जेह सतगुर सिमरंत नायण कै तिमर मिटैखिण, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नाम निद पावै, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरो नरो।
1: जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जमको नहीं त्रास। जिवे अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास।
2: नानक नाम निरंजन जान्यो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई, ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीव रखाई।

0: अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कश कही न जाई, सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई।
1: मोह मल विवश कियो, काम कह केस पछाड़्यो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान स्यों चाड़्यो, जन्म काल कर जोड़, हुकम जो होए समन्ने, पाव सागर बंध्यो, सिख तारे सो परसन्ने, सिर आत्पत सचो तखत, जोग पोग संजोत बल, गुरु रामदास सच सल पन, तू अटल राज।

दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसहं कुरसहं तद डिठे सचे पातशाह मल जनम जनम दी सजण सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजण सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी जैत श्री महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरा हियरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नाव जीवन बिरथ रहाउ बिन गुर मूड़ भय है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अखाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफलियो जन्म सनाथा मोका कीजा दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथ हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चलह मिलंथा हम अंधले ज्ञानहीन।

क्यों चाल मार्ग पंथा हम अंधले का गुर अंचल दीजा जन नानक चलह मिलंथा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जत श्री महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरी गुर नाम दियो रेन लाथा। अब रखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे करे आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत वस्त्र दीन बहसाज सुदामा अपदा ते राखिया गणका पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल जुग होए रख हो दास पाट की लाज माह दिवस मूरत भले जिसका नदर करे नानक मंगा दर्श दान कृपा करो हरे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी हर जेठ जड़न दा लोड़िया जिस अगा सब निवाना हर सज्जन दावन लग्या किसान दे बन हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगा सब निवाना हर सज्जन दावन लग्या किसान दे बन माणक मोती नाम प्रभा उन लगा नाही सन रंग सभी नारायण जेते मन भावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी कराना

साधु संग परापते नानक रंग मनाना हर जेठ नंगीला तिस धणी जिसका भागा मथाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवान हर सज्जन दावन लग्या

0: मांस खाने करने वाले श्री इनकर ब्राह्मण पूरे नारु ना प्यायु साथ कूड़ी रात कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म तनु का डेरा दूर ना कूड़े पर पूर मत्थे टिका तेर तो टिका खाए हाथ छुरी जतक साए निर्वस्त्र हो प्राम ले ताले पूजे प्राण अब पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पट से ना जाना देखे चौका का ठिकार प्राय पेटे कुड़िया
1: मात पिटाए वे मात पिटे वन सड़ा पिटे तन पिटे फेड करे मर जुटे चली परे कहो ना सत्य आई है
0: सुच होवे ता सच पा